0: अरमान मान पुछ रे दिल गिर फिसले दिल गिर फिसले आईने के दामे खमले खुजियाम यारा खुब देता खुजियाम दोस्ता खुब देता सर बख्ते अवले ले अमान अमान अमान अमान अमान अमान कुछ रे
1: मान अमान कुछ रे अमान अमान कुछ रे तब कोला ना क्या बेरे तब कोला ना क्या बेरे वक्ते चाबे